अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

सरयू महारानी के, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के, समस्त पूर्वाचार्यों के, सर्वसंत वैष्णव भगवान के, सत्य सनातन धर्म के, गो माता के, भारत माता के, प्रातः श्रृंगार

जय श्री पवन सुत हनुमान जी की जय श्री उमापति महादेव जी की जय श्री रमापति रामचंद्र जी की जय।

श्री गोविंद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान सृष्टि की तुलना उधर्वमुखी जड़ एवं अधोमुखी शाखाओं वाले एक पीपल वृक्ष से करते हैं एवं इसमें बंधे हुए मनुष्य को अनासक्ति रूपी हथियार द्वारा मुक्त होने को कहते हैं।

श्री भगवान अपने परम धाम के बारे में बतलाते हैं। वह कहते हैं कि जीव लोक के सभी प्राणी मेरे ही अंश हैं, जो कि मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्षरत हैं।

प्रभु कहते हैं कि इस जग में क्षर व अक्षर दो भांति के प्राणी होते हैं, परंतु एक अन्य उत्तम पुरुष जो क्षर अक्षर से परे है वह परमात्मा है और वेदों तथा जग में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं ही पुरुषोत्तम हैं।

0: भारत देश में नदियों की संपत्ति अपार है। उत्तर भारत में सिंधु की सहायक नदियों के अलावा गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, मध्य भारत में नर्मदा और ताप्ती, पूरब में महानदी, दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी और देश की अन्य अनेक नदियां अपनी जीवन जलधाराओं से मानव कल्याण तथा संस्कृति के विकास में योगदान करती हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए कृष्णा वेणी जैसी आराध्य देवी बन गई है। कृष्णा नदी के जन्म के बारे में हमारे पुराणों में वृत्तांत मिलते हैं। एक इस प्रकार है।
1: चतुर्मुख ब्रह्मा ने कहा कि कलयुग के आरंभ के लिए सृष्टि का निर्माण करने का समय जब निकट आ गया, तब महाविष्णु ने पापों के परिहार के लिए तीर्थों के निर्माण की आज्ञा दी। हमने अपनी सम्मति दे दी। महाविष्णु ने अपने भक्त सह्य मुनि से सह्य पर्वत के रूप में अवतार लेने को कहा और वर दिया कि विष्णु अंश रूपी कृष्णा उसके तन पर से सदा सर्वदा बहती रहेगी।
0: इस तरह कृष्णा नदी ने महाविष्णु के अंश के रूप में जन्म लिया।
1: महेश के अंश के रूप में वेणिया या वेणी नदी का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्णा और वेणी नदियों ने मिलकर कृष्णा वेणी का रूप धारण कर लिया।
0: पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि कृष्णा वेणी केशव और शिव का समागत स्वरूप है।
1: कहते हैं हिमालय से भी पुराना है दक्कन का पठार। इसके पश्चिमी कछार में स्थित घाटियों के महाबलेश्वर में गोमुख क्षेत्र है। वही गोमुख से कृष्णा नदी निकलती है।
2: तो

0: पूना स्थित दक्कन कॉलेज के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर एमएस राजगुरु की मान्यता है।
1: नाउ द प्रेजेंट कृष्णा एज यू सी टुडे इट कुड बी एज ओल्ड एज 1 मिलियन ईयर्स ओल्ड
2: एंड आज जिस कृष्णा नदी को आप देखते हैं वो 10 लाख वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। अनुमान है कि कृष्णा नदी के कछारों पर आज के मानव का पत्थर युग के मानव के रूप में पहले पहल करीब 30,000 साल पहले आविर्भाव हुआ था। आप शायद इस तथ्य से अवगत होंगे, जब डोम नामक स्थान पर बांध का निर्माण हो रहा था तब खुदाई में पत्थर युग के अनेक औजार मिले थे।
0: महाबलेश्वर के पर्वत पाद में स्थित वाई गांव से होकर कृष्णा नदी बहती है। ये गांव पहले जैन धर्मावलंबियों का केंद्र था। इसके बाद वहां वेदाध्ययन केंद्र भी बना। मराठी विद्वान श्री तारक तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने वाई के बारे में इस प्रकार विवरण दिया है।
3: There are 7 ghats and there are very fine temples.
4: वाई में 7 घाट हैं। यहाँ कृष्णा नदी के तट पर बहुत सुंदर देवालय हैं। इसीलिए ये गांव लोगों को आज ही नहीं सदियों से आकर्षित करता आ रहा है।
0: वाई पहुंचते ही आपको ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ 384 देवालय हैं और 7 जगहों पर स्नान करने के लिए घाट हैं। कृष्णा नदी के तट पर स्थित पवित्र स्थलों में वाई गांव को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। वाई ग्रामवासी लेखक श्री रविंद्र भट्ट ने बताया,
5: आमच्या वाईची कृष्णाबाई ही नुसत्या वाईचीच नाही तर साऱ्या परिसराचीच लोकमाता।
4: कृष्णा नदी केवल हमारी ही नहीं बल्कि सबकी लोक माता है। शिवाजी ने सुल्तान अफजल खां पर चढ़ाई करते समय कृष्णा नदी की पूजा कर विजय प्राप्त की। तब से कुल धर्म तथा जाति भेद के बिना सभी लोग माघ मास में 5 दिन उत्सव मनाते आ रहे हैं।
5: वाचवाव म्हणून अतिशय कारुण्यान
0: कृष्णा और वेणी मिलकर अविरल जल प्रवाह बन कृष्णा वेणी के रूप में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कोयना, यारला, वरुणा, दूध गंगा आदि उपनदियां इसमें मिलती गईं। पश्चिम की घाटियों में पश्चिम की ओर बहने वाली और अरब सागर में मिलने वाली नदियों की लंबाई बहुत कम है, लेकिन ये नदियां जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी रही हैं। इसके विपरीत कृष्णा नदी 1500 मीटर की ऊंचाई पर जन्म लेकर पूरब की ओर बहती हुई 1200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है और फिर कृष्णा जिले की सुदूर सीमा में इसका सागर से संगम होता है।

0: इस नदी का प्रवाह प्रांत लगभग 2,59,000 वर्ग किलोमीटर है।
1: इसकी सहायक कोयना नदी पर बनाया गया जल विद्युत केंद्र 860 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है।
0: कृष्णा नदी सतारा से होकर सांगली तथा कुरंदवाड़ा को पार कर बीजापुर में प्रवेश करती है।
1: कर्नाटक में कदम रखते ही कृष्णा वेणी 3 मील के फासले में 408 फुट नीचे की ओर उतरती है, जैसे उछलती कूदती अपने उत्साह को प्रकट करती हो।
0: नीचे उतरते समय होने वाली ध्वनि 30 मील दूर तक सुनाई देती है। ये नदी जिन जिन इलाकों से होकर बहती है उनमें कई ऐतिहासिक महत्व रखते हैं।
1: इनमें मुदगल, बादामी, ऐहोली, पट्टडकल और अन्य अनेक स्थल सुप्रसिद्ध हैं।
0: कर्नाटक में मलप्रहारिणी या मलप्रभा और घटप्रभा नदियां कृष्णा में मिलती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन पर बांधों का निर्माण हुआ। इसी क्षेत्र में वीर शैव धर्म प्रवर्तक श्री बसवेश्वर का प्रादुर्भाव हुआ। भक्तों का कहना है कि उन्होंने सदैव कुडली संगमेवर की पूजा की तथा 400,000 स्वरचित भक्ति गीतों का गान किया, जिन्हें बसव वचन के नाम से पुकारते हैं। इन भक्ति गीतों ने कन्नड़ भाषा को परिपुष्ट किया, अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीति का भी विरोध किया उस महान विभूति बसवेश्वर ने। कृष्णा नदी पर ऊपरी कृष्णा बांध का निर्माण किया गया है। ये कर्नाटक में एक बड़ा बांध है। इस प्रोजेक्ट में आलमट्टी और सिद्धापुर नामक दो बांध हैं। इन बांधों के जरिए लाखों एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए पानी प्राप्त होता है। इससे लोगों का जीवन विधान ही जैसे बदल जाता है। दूध के उफान की तरह श्रू और संपत्ति घर घर में उफनती हैं और फसलें जैसे सोना देती हैं।
2: पश्चिम घाटियों में छत्रपति शिवाजी के द्वारा बनाए गए कई गिरी दुर्गों के पार्श्व के झरनों को मिलाती भीमा नदी आगे बढ़ती है।
1: पंढरीपुर विट्ठल देव के पैरों को जैसे भीमा नदी छूती है।
2: नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम, गोरा, कुंवर, सबकुबाई और कई भक्तों ने विट्ठल देव की पूजा की। भीमा नदी और इनके बीच अटूट

0: रायपुर क्षेत्र में भीमा नदी का मिलन कृष्णा नदी में हुआ है
1: और एक महान सहायक नदी है तुंगभद्रा। वराह पर्वत श्रेणी में गंगमूल के पास तुंगा नदी का जन्म हुआ। भद्रा नदी का भी जन्म इसी क्षेत्र में हुआ। इन दोनों का मिलन ही तुंगभद्रा माना जाता है।
2: आदिशंकर का शारदा पीठ यही है।

0: हसपेट के पास तुंग भद्रा बांध का निर्माण हुआ। इससे सिंचाई के लिए पानी मिलता है, जिससे इस क्षेत्र में खेती की उन्नति हुई है। तुंग भद्रा बांध से बिजली भी तैयार की जाती है। दक्षिण भारत के इतिहास में सभी क्षेत्रों में प्रगति प्राप्त हम्पी विजयनगर का स्पर्श करती हुई तुंगभद्रा आगे बढ़ती है। तुंगभद्रा ने कवि, पंडित, गायक, किसान तथा मजदूरों से सम्मान प्राप्त किया। इस नदी के लिए कहावत प्रचलित है, तान के लिए तुंगा, स्नान के लिए गंगा। आंध्र प्रदेश में कृष्णावेणी और तुंगभद्रा का मिलन होता है। कृष्णा नदी को श्रीशैलम क्षेत्र में पाताल गंगा के नाम से पुकारते हैं। यहाँ जल विद्युत केंद्र का निर्माण किया गया है। रॉयल सीमा के कुछ क्षेत्र को खेती के लिए पानी तथा मद्रास नगर के निवासियों को पीने का पानी देने के लिए तेलुगु गंगा बांध का निर्माण हो रहा है। श्रीशैलम शैव क्षेत्र माना जाता है। यहाँ भ्रमरांबा का शक्तिपीठ तथा मल्लिकार्जुन के ज्योतिर्लिंग है। वाराणसी की तरह यहाँ भी शिवलिंग को छूकर सब लोग जी भरकर पूजा कर सकते हैं। सूर्य शशांक वन्नी नयनम। इक्ष्वाकुल के समय का विजयपुरी इसी कृष्णा नदी के निकट स्थित है। लगभग 2000 वर्ष पहले आचार्य नागार्जुन ने महायान बौद्ध धर्म का प्रचार किया था इस क्षेत्र में। अब यहाँ कृष्णा नदी पर बनाया हुआ नागार्जुन सागर बांध स्थित है। सागर के एक टूरिस्ट गाइड श्री बी वीरेंद्र इस बांध के बारे में यूं बता रहे हैं।
1: दीनी पंडित जवाहरलाल नेहरू गारु 10 दिसंबर 1955 ఈ శంకుస్థాపన చేయడం ద్వారా మొదలైనప్పటికీ అయితే నిర్మాణం మొదలు చేసి
2: స్వర్గీయ పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ 10 దిసంబర్ 1955 ఇస్ బాండ్ కా శిలాన్యాస్ కియా థా किंतु वास्तविक रूप में इसके कार्य की शुरुआत सन 1957 में हुई और सन 1969 में ये योजना पूरी हुई, जिन्हें हम जवाहर केनाल तथा लाल बहादुर केनाल कहते हैं। इन दोनों नहरों का उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 4 अगस्त 1967 को किया। जवाहर नहर की लंबाई 126 मील है। इसके द्वारा 12.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। इससे अनाज तथा कई प्रकार की दलहन की पैदावार में हुई है। बाई नहर तेलंगाना की ओर 111 मील लंबाई में खोदी गई। इससे कृष्णा जिले को भी सिंचाई के लिए पानी मिलता है।
0: इक्ष्वाकुओं का विजयपुरी शहर डूब गया। यहाँ से खोदकर निकाले गए शिल्पों, आरामों, स्तूपों तथा चैत्यों के अवशेष को रखा गया है नागार्जुन सागर के बीच पहाड़ पर स्थित म्यूजियम में। हमारे देश में जलाशय के बीच में स्थित ये अकेला म्यूजियम है।
3: दुनिया में पत्थरों से निर्माण किए गए बांधों में काले पत्थरों से निर्माण किया गया नागार्जुन सागर का ये बांध सबसे बड़ा है।
0: इतिहास प्रसिद्ध पलनाडु कृष्णा नदी के नजदीक है।
3: यहाँ के शासक ब्रह्म नायडू की शासन व्यवस्था बहुत लोकप्रिय थी। उनकी लोकप्रियता लोक जीवन का स्वर बनकर आज भी गूंजती है।

ब्रह्मा नायडू अपना शासन संचालन इस प्रकार करते थे कि उनके राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रह गया था। उन्होंने सभी धर्मों को आदर दिया, मानव मात्र में समानता की भावना फैलाई और सब में एकता की भावना फैली। उन्होंने सहभोज की परंपरा चलाई। इतना ही नहीं बल्कि ब्रह्मा नायडू ने हरिजन कुलोत्पन्न कन्नमदास को अपना सेनापति बनाया था। मानव समानता के ऐसे नियामक ब्रह्मा नायडू

0: छोटे छोटे पत्थर फुटकर भगवान है, नागलेट का पानी पारस का पत्थर है, बाजरा है, ज्वार का भात है, सर्प और बिच्छू है, पलनाटी सीमा के गांव ऐसे हैं।
1: आज इस क्षेत्र में मिलने वाले पत्थरों का उपयोग करके सीमेंट बनाया जाता है, ईख का उत्पादन करके शक्कर बनाया जा रहा है।
2: हैदराबाद क्षेत्र से मुसी नदी मत सामंजस्य की भावना प्रवाहित करते हुए कृष्णा नदी में मिलती है।
3: मुसी का आना पूरी हो मेरी कामना, ये कहावत शायद सच हो गई।
1: वेदादी नारसिंह क्षेत्र के पार्श्व से कृष्णा नदी अमरावती की ओर निकली।
4: बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं।
1: बौद्ध साहित्य और संस्कृति में प्राचीन अमरावती का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ईसा के 200 वर्ष पूर्व से ईसवी सन के 200 वर्षों तक अमरावती के बौद्ध स्तूप निरंतर कीर्तिमान होते रहे। यहाँ के गाइड श्री माची राजू वेणुगोपाल।
5: पेरलो अंदम ऊरीलो चंदन कलिगिनटुवंटि अमरावतिलो अद्भुतमैनटुवंटि अपूर्व शिल्प निकुंजालु
6: मान में शोभा तथा गांव में सुंदरता लिए अमरावती अपने आप में अद्भुत है, और अद्भुत तथा अपूर्व है यहाँ का शिल्प समूह। उसे देखकर हृदय में आनंद का संचार तो होता ही है, आश्चर्य भी होता है। यहाँ के शिल्पियों की निपुणता आंध्र के इतिहास में चार चांद लगाती है। यहाँ प्राचीन काल में महाचैत्य भी था। ऐसा माना जाता है कि अशोक के बाद महादेव नाम के बुद्ध सन्यासी ने बुद्ध की धातुओं को उसमें रखा था।
5: उच्च स्थिति अमरावती महाचैत्या मोटमोदारी 1797
1: 2000 वर्ष पहले निर्मित इन स्तूपों की शिल्पकला उस समय के जीवन विधान की ओर जैसे आज भी संकेत करती हो। इतिहास बताता है कि यहाँ के शिल्पकारों ने अपनी कला को एक ओर कार्लो में तो दूसरी ओर अजंता और एलोरा में प्रसारित किया।
3: इसके अलावा उन्होंने सांची तथा ग्वालियर जाकर भी पत्थरों में रूप कल्पना को साकार किया और अपार शिल्प संपत्ति की सृष्टि की।
2: प्रमुख शिल्प समालोचक आनंद कुमार स्वामी के अनुसार अमरावती की शिल्पकला लालसा और उन्माद भरने वाली है, और भारतीय शिल्प जगत में अत्यंत सुकुमार और सुंदर है।
1: अमरावती के बगल में ही अमरेश्वर का मंदिर है, जहां से कृष्णा और कुछ दूर पूरब की ओर यात्रा करती हुई विजयवाड़ा पहुंचती है।

0: ये एक शैव क्षेत्र है। इंद्र की लाद्री पर स्थित कनक दुर्गा तथा मल्लेश्वर नित्य भक्तों की आरती से प्रसन्न होते हैं। सर आर्थर कॉटन के अनुसार जनरल कोर ने सन 1855 में यही 3714 फुट लंबे बांध का निर्माण किया। गोदावरी के पार्श्व में स्थित कोत्तगु डैम के कोयले से और कृष्णा नदी के पानी से विजयवाड़ा के थर्मल स्टेशन में बिजली का उत्पादन होता है। इसके बारे में कृष्णा केंद्रीय मंडल के अधिकारी श्री एम नरसिम्हा राव बताते हैं।
1: दक्षिण भारत देश कृष्णा नदी रेंडो पद्धति कृष्णा नदी विजयवाड़ा
2: कृष्णा नदी विजयवाड़ा के पास एक तिहाई मील खाली भाग में दो पहाड़ों के बीच बहती है। इससे यहाँ बांध बांधने में सुविधा हुई। सन 1952 में 100 साल पूरे हुए। इस बांध की नींव कमजोर हो गई, जिसके कारण इसमें दरारें पड़ गईं। उसके बाद सब तरह से सुविधाजनक रोड कम रेगुलेटर का निर्माण हुआ, जो नेशनल हाईवे नंबर 5 से मिलता है।
0: प्रकाशम बराज नामक इस बांध से अब 13,30,000 एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। कृष्णा नदी विजयवाड़ा से आगे बढ़कर कुचिलपुरी के पास से बहती है। यहीं पर सिद्धेंद्र योगी ने भामा कलाप की रचना की। तब से सिद्धेंद्र जी की सत्यभामा ने कुचिपुटी भागवतों से पूर्णता प्राप्त कर देश विदेश में ख्याति पाई। भरत की आराधना करने वाले कुचिपुड़ी लोगों ने अपने को कृष्णा तटवासी कहते हुए भामा के साथ जोड़ा।

मूर्व क्षत्रिया के पदों का अभिनय करने वाली नर्तकी मणिया श्रीकाकुलेंद्र महाविष्णु देवालय में देवदासियों की तरह रहा करती थी। ये देवालय प्राचीन समय में कृष्णा नदी के बीच द्वीप पर था और अब आसपास के क्षेत्र केले, ईख, आम, हल्दी, नारियल आदि के बागीचों के साथ साथ बाजरा, ज्वार, मक्का, दलहन आदि के खेतों से सदा हरे भरे रहते हैं, जैसे कृष्णा नदी का पानी सोने की फसलें देता हो।

किसान तथा खेत में काम करने वाले मजदूर माता कृष्णा की आराधना करते हैं। उस क्षेत्र में बहती कृष्णा का प्रवाह वेग कम होता जाता है, किंतु उसके पाट की चौड़ाई बढ़ती जाती है। सागर से आने वाले ज्वार से उसका स्पर्श होता रहता है और वो शनि शनि सागर की ओर बढ़ती रहती है।

0: द्वीप में 30,000 एकड़ भूमि को खेती के योग्य बनाया गया। पुली गड्ढा के पास एक सेतु वहीं का भी निर्माण हुआ। इस तरह कृष्णा नदी के द्वीपों के साथ साथ अवनी गड्ढा द्वीप को भी सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई, लेकिन एद्रु मुंडी तथा इलीचट दिब्बा को पानी नहीं मिलता है। कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों में सिंचाई बांधों के निर्माण तथा आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर और श्री श्वालम बांधों के निर्माण से कृष्णा नदी के निचले भाग का जल प्रवाह रुक गया है। समुद्र का पानी 20 किलोमीटर तक ऊपर आ जाता है, इसीलिए लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। इसलिए आसपास के अनेक लोग अन्य क्षेत्रों में जा चुके हैं।
1: पानी की इस दीनता भरी समस्या के बारे में किसान श्री तलशील बुलैया चौधरी की राय इस प्रकार है।
2: गत 6 సంవత్సరాల నుంచి పంటలు ఇక్కడ పూర్తిగా పోయిని దాని మీద ఇక్కడ ఏం ఆధారం లేక బయట వెళ్ళి వ్యాపారం చేసుకుని వలసలు పే పరిస్థితి వచ్చింది।
3: बीते 6 సంవత్సరాలు से पूरी की पूरी फसल नष्ट हो रही है, इससे लोग जीवनाधार खो रहे हैं, इसलिए उन्हें गांव छोड़कर काम की खोज में बाहर जाना पड़ता है अथवा प्रवास करने का निर्णय लेने की स्थिति भी आ जाती है।
1: मछली पालन विभाग के एक भूतपूर्व उच्च अधिकारी श्री सैक अर्जुन राव का कहना है,
2: पंट लेकिन चिन्नकारु सन्नकारु रैतुलु मरी इतर प्रांताल की
4: पिछले 6 సంవత్సరాలు से फसल न होने के कारण यहाँ के छोटे छोटे गरीब किसान दूसरे प्रांतों में जाकर मजदूरी करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। श्री मुक्कामल नागभूषण ने सरकार की सहायता से सन 1991 जनवरी में जल समस्या के निवारण का प्रयत्न किया। इससे इस द्वीप में रहने वाले लोगों को पीने के लिए तथा खेती के लिए पानी प्राप्त हुआ।
1: कृष्णा नदी के आसपास के स्थानों में जहाँ तुंगभद्रा मिलती है, हीरे की खाने है, कुछ अन्य मूल्यवान खनिज भी है। सागर संगम के क्षेत्र में तेल तथा गैस उपलब्ध है। मछलियां तथा झींगे अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कीमती संपत्ति का दान करती है कल्याणी कृष्णा वेणी।

0: महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र के लोगों की आराध्य देवी कृष्णा वेणी श्री संपदा की अगाध निधि का दान करती हुई और संस्कृति को संपन्न करती हुई अंततः सागर से जा मिलती है, जैसे अपने प्रियतम की गोद में जाकर अपने अस्तित्व का विलय कर रही हो।
1: प्रणाम।

0: जय।
1: जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम

0: सर्वेश्वर शिव की महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि महादेव शंकर की इच्छा से परमपिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और रुद्रदेव को सृष्टि की उत्पत्ति, जीवों का पालन और प्राणियों की मुक्ति के तीनों काम देकर भगवान अंतर्धान हो गए। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे। ये प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता के 15वें अध्याय से आरंभ होता है। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: हे शौनक, परमपिता ब्रह्मा की संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने में उन्हीं की इच्छा और संकल्प से तीनों लोकों में चर और अचर तत्वों की रचना हुई।
2: हे महामुनि सूत जी, आप कृपा कर मुझे बताएं कि परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की।
1: शौनक जी, यही प्रश्न परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने ब्रह्मा से किया था। मैं तुम्हें वही प्रसंग संक्षिप्त में सुनाता हूं। एक दिन ब्रह्मलोक में महर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए पहुंचे और अपने पिता ब्रह्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
3: नारायण नारायण नारायण। हे परम पिता ब्रह्मा, मैं आपका पुत्र नारद आपको प्रणाम करता हूँ।
4: देवर्षि नारद, कहाँ कहाँ विचरण करके आ रहे हैं? लगता है आपके मन में कोई बड़ी जिज्ञासा है जिसके कारण आपका चित्त प्रश्नों से भरा हुआ है।
3: हे परम पिता, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि आपने सृष्टि का आरंभ कैसे किया। ये कथा संसार के अनेक प्राणियों को ज्ञात नहीं है।
4: आपकी जिज्ञासा संसार के प्राणियों का कल्याण करने वाली है। अतः मैं आपको उसके संबंध में संक्षिप्त में बताता हूं। भगवान महादेव ने जब मुझे और भगवान विष्णु तथा रुद्र को सृष्टि के तीनों कामों अर्थात उत्पत्ति, संचालन और विनाश का दायित्व सौंपा तो वे मुझे आदेश देकर अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु भी अपने वैकुंठ लोक जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, हे विष्णु भगवान, महादेव ने मुझे एक कठिन काम सौंपा है। ये आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। देव, मैं नहीं जानता कि सृष्टि के आरंभ के लिए मैं कौन सा यत्न करूं।
5: हे ब्रह्मा, आप ब्रह्मांड के सभी 24 तत्वों का साथ ग्रहण कीजिए जिससे सृष्टि के संचालन में विविधता और तरह तरह की क्रियाओं का समावेश हो सके। इसमें केवल सतोगुण ही नहीं बल्कि तमोगुण और रजोगुण भी होने चाहिए। तभी सृष्टि के सभी जीवों के कामकाज पर भांति भांति की भावनाओं का संचार हो सकेगा।
4: हे विष्णु, ये आपने बहुत सुंदर बात कही है, मैं ऐसा ही करता हूं।
5: हे ब्रह्मा, अब मैं वैकुंठ जाता हूं, आवश्यकता होने पर मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगा।
4: अपने आप से पूरे ब्रह्मांड में केवल जल ही जल है। इसी जल से मुझे सृष्टि की रचना करनी है। हे शिव, इस जल के द्वारा मैं आपका स्मरण करता हूं, सृष्टि रचने का संकल्प लेता हूं। यह विशाल जल से भरी अंजलि मैं आपको समर्पित कर

0: मैं अभी अभी जन्मे भगवान शिव की शरण लेता हूं। सत्य जाग को मेरा प्रणाम है। इसी जगत में आप मेरा पराभव न करें। आप सृष्टि के उद्भव कर्ता को मेरा प्रणाम। भगवान शंकर की कृपा से मेरी अंजुरी के जल से यह विशाल अंडा पैदा हुआ है। यही इस सृष्टि का मूल कारक होगा। परंतु ये क्या? ये तो केवल जड़ है। चेतना के अभाव में सृष्टि कैसे होगी? इस अंड में चेतना लाने के लिए मैं क्या करूं? हे भगवान विष्णु, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। मैं आपकी शरण में हूं। मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए।
1: हे ब्रह्मा, मुझे आदेश दें।

0: आपके लिए क्या कर सकता हूँ हे महाभाग? आपकी सम्मति के अनुसार मैंने 24 तत्वों से बना ये अंड पैदा किया है, परंतु इसमें किसी प्रकार की चेतना के चिन्ह दिखाई नहीं देते। आपको भगवान शिव ने सृष्टि के संचालन और पालन का दायित्व सौंपा है, इसलिए प्रभो आप स्वयं इस अंड में प्रवेश कीजिए।
1: जैसी आपकी इच्छा देव, मैं भूमि को सब ओर से घेर कर इस विशाल अंड में स्वयं प्रवेश करता हूं।
0: हाँ, इस अंड में चेतना के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। अब सृष्टि के अलग अलग तरह के कार्यों के लिए तमो गुण आवश्यक है। हे शिव, पाप पूर्ण तमो गुण, सृष्टि के प्रादुर्भाव के लिए अविद्या पंचम जागृति। सृष्टि की रचना का पहला चरण पूर्ण हुआ, परंतु ये तो केवल तमोगुण ही है, पापमय। इनसे सृष्टि का संचालन कैसे होगा? ये रहा तो तिर्या रहा है, यानी पशु पक्षी जो तिरछे चलते हैं, इससे प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? हे शिव, तमो गुण के अतिरिक्त और भी कुछ चाहिए जिससे सृष्टि के प्राणियों का उद्धार हो। हां, सतो गुण, सतो गुण, सतो गुण। हां, यही है सात्विक सर्ग का उदय, देव सर्ग। परंतु पुरुषार्थ साधन के लिए तो ये भी पर्याप्त नहीं है। तमो गुण और सतो गुण के अतिरिक्त कुछ और होना चाहिए। हे शिव शंभो, रजोगुण, रजोगुण, रजोगुण। यही रजोगुण संसार के प्राणियों के लिए पुरुषार्थ का साधन बनेंगे। एक ओर तमोगुण, दूसरी ओर सतोगुण और मध्य में रजोगुण। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य होंगे जो पुरुषार्थ साधन के सबसे बड़े अधिकारी होंगे। हे शिव, आपकी आज्ञा से मैंने चर अचर, स्थावर जंगम और कर्म के अधिकारी मनुष्यों की रचना का संकल्प पूर्ण किया। किंतु अभी तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ। संसार के प्राणी का जन्म और मृत्यु कैसे होगी? मैं अपने चारों मानस पुत्रों सनक आदि ऋषियों को बुलाता हूं।
2: हे परमपिता, आपका क्या आदेश है?
0: हे पुत्रो, भगवान शिव की आज्ञा से मैंने सृष्टि में चर अचर, जड़ चेतन, स्थावर जंगम तथ्यों का उदय कर दिया है, लेकिन सृष्टि के संचालन के लिए जीवों की उत्पत्ति की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस काम में मेरी सहायता करो।
2: हे परमपिता, हम तो वैरागी हैं, हम संतान उत्पन्न करने का कार्य कैसे कर सकते हैं?
0: परंतु पुत्र, सृष्टि की पूर्णता के लिए यह आवश्यक है।
2: हे पिता, हम अपना उत्तम व्रत नहीं छोड़ सकते।
0: मैं कहता हूं ये मेरा आदेश है, तुम चारों मेरी आज्ञा का पालन करो।
2: क्षमा देव, ये असंभव है, असंभव।
0: मेरे ही मानस पुत्र होकर मेरी आज्ञा की अवहेलना।

ना कर रहे हो? ये मैं नहीं सह सकता। तुम्हें मेरे क्रोध का ज्ञान नहीं है। मैं तुम्हारा भयंकर अनिष्ट कर सकता हूं। हे भगवान विष्णु, मेरी सहायता कीजिए। मेरे मानस पुत्र मेरा आदेश पालन करने से मना कर रहे हैं। ये मेरे संकल्प की पूर्ति में बाधक हो रहे हैं।

0: सृष्टि की रचना का मेरा काम अधूरा रह जाएगा।
1: हे ब्रह्मा, आप सर्वेश्वर शिव की शरण में जाएं, वे ही आपको इस कठिन समय में राह सुझाएंगे।

हे शिव शंभू, आप ही रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करते हैं। सतो गुण से संपन्न होकर सातों भवनों का धारण पोषण करते हैं। तमोगुण से युक्त होकर सबका संहार करते हैं और त्रिगुणमयी माया को लांघकर अपने सिद्ध स्वरूप में स्थिर रहते हैं। सत्यचित आनंद स्वरूप पूर्ण आपको हम प्रणाम करते हैं। आप ही सृष्टि के काल में मुझ ब्रह्म, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र का नाम धारण करते हैं। आप सदैव सात्विक भाव को अपनाने से ही प्राप्त होते हैं। आपको प्रणाम।

0: सृष्टि के आदिकर्ता ब्रह्मा, मैं सदाशिव हूँ, आपका कौन सा काम पूरा कर सकता हूँ?
1: हे महादेव, आपका ये रूप मुझे चकित कर रहा है। आपका आधा शरीर पुरुष का और आधा नारी का है, ये क्या रहस्य प्रभु?
0: हे ब्रह्मा, आपके संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अर्ध नारीश्वर रूप में प्रकट हुआ हूं। संसार की उत्पत्ति के लिए नर और मादा दोनों का होना आवश्यक है।
1: देव, कृपा पूर्वक आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों।
0: ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करता, क्योंकि वे अपने पाप और पुण्य कर्मों के अधीन होकर सुख और दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार ही करूंगा।
1: हे महेश्वर, तो क्या जीवों की सृष्टि का काम भी मुझे ही करना होगा?
0: प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीवों की सृष्टि आप ही करेंगे। मेरी आज्ञा से ये काम करने के कारण माया आपको बांध नहीं सकेगी।
2: नारायण नारायण। हे परम पिता ब्रह्मा, सृष्टि के आरंभ की कथा तो अत्यंत मनोहारी है, इसके बाद आपने क्या किया?

0: हे पुत्र, इसके बाद मैंने सृष्टि के पांच तत्वों को मिलाकर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। इन्हीं के मेल जोल से पर्वतों, समुद्रों और पेड़ पौधों को उत्पन्न किया। कला से लेकर काल तक के अलग अलग भागों की रचना की।
1: हे परम पिता, इसके बाद आपने संसार में पुरुषों की सृष्टि कैसे की?
0: नारद, सबसे पहले मैंने अपने दोनों नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, वशिष्ठ को अपान से, केतु को कानों से, अत्रि को प्राणों से, तक्ष को गोद से, तुम्ब को छाया से, कर्दम मुनि को संकल्प से, तथा धर्म से तुमको उत्पन्न किया।
1: हे परम पिता, क्या इन्हीं से देवताओं और असुरों की सृष्टि हुई?
0: हाँ नारद, भगवान शंकर की प्रेरणा से मैं अपने शरीर को दो भागों में बांट कर आधे शरीर से पुरुष और आधे शरीर से स्त्री हो गया। उस पुरुष का नाम मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्त्री का नाम सतरूपा से। मनु ने सतरूपा के गर्भ से प्रियावर्त और उत्तानपान नामक दो पुत्र पैदा किए और तीन कन्याएं, जिनके नाम आहुति, देव आहुति, प्रसूति थे। आहुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ, देवाहुति का कर्दम के साथ और प्रसूति का दक्ष के साथ विवाह हुआ। उनकी संतान परंपराएं ही सारे जगत में व्याप्त हैं।
1: भगवान, महादेव शंकर कैलाश पर कब गए?
0: नारद, ये कथा बहुत दिलचस्प है। कामपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनके एक पुत्र था गुणनिधि। गुणनिधि बहुत ही दुराचारी तथा भोगी था। पिता के लाख समझाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। पिता यज्ञदत्त ने गुणनिधि को निष्कासित कर दिया। गुणनिधि एक अन्य नगर में चला गया। वहां के शिव मंदिर में बहुत चढ़ावा आता था। गुणनिधि के मन में लालच आ गया और उसने चढ़ावा चुरा लिया। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। उसे लेने जब यमदूत आए तो
2: गुणनिधि, तूने जीवन भर दुराचार किया है। यम की आज्ञा से हम तुझे यमलोक ले जाते हैं। तुझे नरक की घोर यात्राएं सहनी पड़ेंगी।
3: हे यमदूत, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नरक की यातना से बचा लो। यमदूत
4: ठहरो। महाराज यम के दूतों, तुम इसे यमलोक नहीं ले जा सकते।
2: नहीं ले जा सकते? किंतु क्यों? इसने तो जीवन भर अनेक कुकर्म किए हैं। महाराज यम की आज्ञा है कि
4: किंतु महादेव शिव की आज्ञा है कि गुणनिधि की आत्मा को शिवलोक ले जाया जाए।
2: किंतु इसने तो कोई पुण्य का काम नहीं किया।
4: किया है। इसने अंधकार ग्रस्त शिव मंदिर में दीप जलाया है।
3: दीप? किंतु वो तो मेरा वस्त्र था।
4: हाँ, वही भगवान शिव के लिए वही दीपदान था।
3: हाँ?
4: सर्वेश्वर शिव की कृपा से तुम शिवलोक के अधिकारी हो गए। हाँ? आओ गुणनिधि, शिवलोक चले।
3: हाँ?
4: आओ।
3: जय भोले, जय भोलेनाथ।
4: आओ आओ गुणनिधि, महादेव शंकर विराजमान हैं।
3: हे करुणा निदान, मैं आपको बार बार बारंबार प्रणाम करता हूं। मैंने जीवन भर अनेक पाप किए। मुझे सचमुच पश्चाताप है। मुझे क्षमा करें दे।
5: गुणनिधि,
3: प्रभु,
5: तुमने मेरे मंदिर में ज्योति जलाई है, इसलिए तुम अगले जन्म में कलिंग देश के राजा के पुत्र के रूप में जन्म लोगे।
3: प्रभु,
5: तुम्हारा नाम राजा दम होगा और तुम्हें सत्कर्मों के लिए एक और अवसर मिलेगा।
3: हे प्रभु, हे महादेव, आपकी जय हो। आप सचमुच भोले भंडारी हैं। प्रभु, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ।
0: ये कैसा तेज है, जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ धरती पर उतर आए हों।
5: हे अलकापति, मैं साक्षात शिव हूं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूं। बोलो, तुम्हारा मनोरथ क्या है?
0: हे महादेव, आपकी जय हो। आपके तेज से मेरी आंखें चुधिया गई हैं। मैं कुछ भी देख पाने में असमर्थ हूं प्रभु। कृपया मेरी दृष्टि को ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आपके दर्शन कर सकूं।
5: तथास्तु।
0: सर्वेश्वर शंकर की जय हो। आपका अलौकिक रूप देखकर मैं धन्य हुआ प्रभु। लेकिन महादेव के साथ ये कौन है? अद्भुत सुंदरी, भगवान शिव के इतने निकट, इन्होंने ऐसा कौन सा तप किया है जो मेरी तपस्या से भी बढ़कर है?
6: महादेव, ये तपस्वी लगातार मेरी ओर देखकर क्या बड़बड़ा रहा है? इसकी दृष्टि मुझे असहनीय है। मैं इसके एक नेत्र की ज्योति हर लेती हूँ।
5: उमा, ये क्या किया? ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हें पाप दृष्टि से नहीं देख रहा था। बस प्रभु, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं। तुम्हें वर देता हूं कि तुम संसार की सारी संपत्तियों के स्वामी और सबके लिए धन के दाता बनो। आओ पुत्र, अपनी माता के चरणों में प्रणाम करो।
0: महादेवी उमा, मुझ पर कृपा कीजिए।
6: पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारी बाई आंख तो ज्योतिहीन हो गई है, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम कुबेर के नाम से जाने जाओगे। भगवान शिव में तुम्हारी भक्ति बनी रहे।
0: हे उमापति शंकर, मेरी तपस्या सफल

0: स्वामी, आपकी लीला का रहस्य कोई नहीं जानता। आपने कुबेर को वर देकर उसे संसार की सारी निधियों का स्वामी बनाकर अद्भुत कर्म किया है।
1: देवी, मेरी इच्छा है कि कुबेर के साथ हम कैलाश पर्वत पर ही निवास करें। यह कैलाश पर्वत तीनों लोकों के सुख से भी अधिक सुखदायी और मनोहारी होगा।
0: जैसी आपकी इच्छा प्रभु।
2: सूत जी, महादेव की कैलाश पर जाने की कथा सुनकर मन आनंद से भर गया। अब आप कृपा कर आगे की कथा कहें।
3: हे शौनक, अब कामदेव और रति के विवाह का प्रसंग और दक्ष की तपस्या का वर्णन अगली बार बताएंगे।
4: श्रोताओं, अभी आप रुद्र संहिता के प्रथम अंक की कथा सुन रहे थे। अगले प्रकरण में भगवान शिव की इच्छा से सृष्टि के लिए एक पुरुष और एक नारी के प्रकट होने की कथा का वर्णन करेंगे।

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं पानी, बजले रे मन सारंग पानी। अब न भजस भजस कब पाई, अब न भजस भजस कब

लक्ष्मण का समझाए के राम बहुले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक की छठी कड़ी।

0: कुंदेन्दीवर सुंदरावती पलौ विज्ञान धामा उभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृंद प्रियौ माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धर्म वरमौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ हिना। सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हुए श्री राम जी ऋष्यमूह पर्वत पहुंचे। वहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। महापराक्रमी राम और लक्ष्मण को आते देखकर सुग्रीव पहले तो चिंतित हुए कि कहीं बाली ने ही तो इन्हें नहीं भेज दिया है। फिर विचार कर हनुमान जी को सारी स्थिति की जानकारी के लिए भेजा। हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप धारण कर श्री राम जी के निकट पहुंचे।
1: भद्र पुरुषों की सेवा में मेरा प्रणाम।
2: प्रणाम।
1: कुतुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बनबीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हित बिचरहु बन स्वामी कहीं आप ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन देवताओं में से तो नहीं है या फिर आप नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार।
2: वीरवर कोसलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुख मारी सुहाई। पंचवटी से किसी राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया है। हम दोनों उन्हें खोज रहे हैं। बस यही हमारी गाथा है। अब आप भी तो अपना परिचय दीजिए।
1: स्वामी मेरा आपसे

0: परिचय पूछना तो न्याय संगत था। मैंने वर्षों बाद आपको देखा है, वो भी तपस्वी के वेश में। अपनी बानरी बुद्धि के अनुसार मैं आपको पहचान नहीं सका, परंतु आप तो सर्वज्ञ हैं। फिर तुम पूछो कस नर की नाई, तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान।
1: हनुमान हनुमान,
0: मानता हूं प्रभु मैं अवगुणों की खान हूं, किंतु आप मुझको भूल जाए। स्वामी मैं मानता हूं हर जीव आपकी माया से मोहित है, आपकी कृपा से ही भव सागर से पार हो सकता है। फिर प्रभु मैं तो भजन उपाय कुछ भी नहीं जानता। जिस तरह पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, उसी तरह सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है।
1: हनुमान हनुमान उठो, मेरे हृदय से लग जाओ।
2: तात, आपके नेत्रों में अश्रुकण।
1: यह अश्रुकण नहीं लक्ष्मण, यह हनुमान से मिलने का उल्लास है। अपने मन में क्लानी मत लाओ कभी, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो।
2: सब आपको समदर्शी कहते हैं, आपके लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय है।
1: पर मुझे सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझको छोड़कर उनका कोई और सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत।
0: नाथ सैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तब आई, तेहि सन्नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज करा इह, जहां ता मरकट कोट पठा इह।
3: इस प्रकार हनुमान ने श्री राम जी को सुग्रीव की कथा समझाई, फिर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को इस प्रकार हनुमान के साथ आते देखा, तो अपने जन्म को धन्य समझा। मन में सोचने लगा, हे विधाता, क्या ये मुझसे स्नेह करेंगे? उनके आते ही सुग्रीव ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। राम ने उन्हें कंठ से लगा लिया। तब हनुमान ने उन दोनों को एक दूसरे की गाथा सुनाकर अग्नि की साक्षी कर उन दोनों में मित्रता करवाई। कीनी प्रीत कछ बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा।
4: वानर राज मेरे भाई महापराक्रमी राम हैं, हम दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। राम के शौर्य से संपूर्ण वन राक्षस विहीन हो चुका है। खर दूषण त्रिशरा और कबंध जैसे महाबली राक्षस राम के हाथों मारे जा चुके हैं। इस पर खींचकर राक्षस राज रावण ने सीता जी का अपहरण किया है। हम उन्हें ही खोजते हुए यहां तक पहुंचे हैं।
5: देव, आप लोग चिंता न करें, सीता जी आपको मिल जाएंगी। एक बार मैं यहां बैठा हुआ अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा था। गगन पंथ देखे मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें ही देख दीने पट डारी।
1: वो वस्त्र मुझे दिखाओ सुग्रीव।
5: अभी लो प्रभु, ये लीजिए प्रभु।
1: वही है, सीता के ही वस्त्र हैं।
5: प्रभु आप चिंता न करें, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। मैं वो हर संभव उपाय करूंगा जिससे सीता जी आपको मिल जाएं।
1: मुझे तुम पर विश्वास है सुग्रीव। अब एक बात बताओ सखा, तुम इस प्रकार वन में क्यों रह रहे हो?
5: स्वामी, मैं और बाली दो भाई हैं। कभी हम दोनों में ऐसा स्नेह था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की गाथा है, मैं दानव का महाबली पुत्र मायावी हमारे नगर में आया और आधी रात के समय ऊंचे स्वर में बाली को ललकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार कैसे

0: सकता था। बाली हुंकार कर उसके पीछे भागा। मैं भी ये सब देख भाई के साथ साथ चला।
1: दुष्ट मायावी ठहर, मैं तुझ भी तेरी ललकार का प्रत्युत्तर दूंगा। सुग्रीव।
0: हाँ भैया।
1: तुम देख रहे हो मायावी इस पर्वत की गुफा में घुस गया है। तुम मेघ पखवाड़े तक यही मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिन तक लौट कर नहीं आ सका तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो चुकी है।
0: भैया ये आप क्या कह रहे हैं?
1: मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं गुफा भी जाकर इससे युद्ध करूंगा।
0: प्रभु मैं वहां 1 मास तक रहा, तब एक दिन मैंने देखा गुफा से खून की बड़ी धारा बह निकली है। मायावी ने बाली को मार दिया है और मुझको आकर मार देगा, क्योंकि मैं बाली से अधिक बली नहीं हूं। ये सोच मैं गुफा के द्वार पर विशाल शिलाखंड लगाकर लौट आया। मंत्रियों ने राजधानी को बिना स्वामी के देखा, मेरी इच्छा ना होने पर भी उन्होंने मुझे राजा बना दिया।
2: चुप क्यों हो गए सुग्रीव, बोलते क्यों नहीं?
0: कुछ दिनों बाद बाली शत्रु को मारकर घर लौटा। आश्चर्य तो यह था प्रभु कि उसके हृदय में मेरे प्रत्येक शत्रु के समान रोष था। रिपु सम मोही मारे से अति भारी, हरि लीने से सर्वस अरनारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला, यहां साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही।
3: सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उपरे ही प्राण। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, सिद्धांत कहता है जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई। अतः सखा सुग्रीव मेरे बल पर अब तुम अपनी चिंता छोड़ दो, मैं हर प्रकार तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा।
0: देव बाली महाबली और अत्यंत रणधीर है, देखिए वो दुंदवी राक्षस की अस्थियों का समूह है, ताड़ के वृक्ष हैं। ऐसी बात प्रचलित है कि जो इनका विनाश कर सकेगा उसी के द्वारा बालीवध होगा।
3: तो लो मैं इन्हें एक ही बाण से नष्ट किए देता हूं।
0: आश्चर्य, एक ही बाण ने यह चमत्कार कर दिखाया। मुझको विश्वास हो गया कि आप निश्चित वाली का वध करेंगे।
3: निश्चिंत रहो सुग्रीव, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा।
0: बाली तो मेरा उपकारी है, जिसकी कृपा से दुखों का नाश करने वाले आप मुझे मिले। नहीं प्रभु, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, सुख संपत्ति परिवार और अहम का त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे वरदान दीजिए कि मैं सब कुछ त्याग कर दिन रात आपका भजन करूं।
3: ऐसा ही होगा, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते। बाली मारा जाएगा और तुम किष्किंधापति बनोगे। उठो सखा, यह वैराग्य की वाणी छोड़ो और बाली से युद्ध करने को तत्पर हो जाओ। आओ मेरे साथ।
4: बाली, बाली, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं, शक्ति है तो आकर मुझसे युद्ध करो।
5: आज इस सुग्रीव को क्या हो गया, कहीं भांग तो नहीं खा गया?
4: ठहर, मैं अभी तेरी खबर लेता हूं।
6: स्वामी, स्वामी, पहले मेरी एक बात सुनिए।
5: क्या है?
6: ये सुग्रीव नहीं गरज रहा, ये राम और लक्ष्मण की शक्ति गरज रही है। सुनो पति, जिन्हें मिले वो सुग्रीवा, ते तो बंधु तेज बल सीमा, कोसले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा।
5: भीरु प्रिय, राम समदर्शी हैं, यदि वे

0: मुझे मारेंगे तब भी मुझको परम पद प्राप्त होगा। दुहाई है प्रभु, आपकी दुहाई है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, मेरा काल है।
1: मैं भी विवश था सुग्रीव, तुम दोनों भाई समान रूप के हो। मैं भ्रम में पड़ गया, सोचा कहीं बाली के धोखे में तुम ही ना मारे जाओ। लो ये पुष्पमाला धारण करो ताकि मुझको तुम्हारी पहचान रहे। जाओ निश्चिंत होकर युद्ध करो।
0: स्वामी, आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, इस पर भी आपने पेड़ की ओट में छिपकर व्याध की भांति मुझे मारा। मैं पहले सुग्रीव प्यारा, अब कुन कवन नाथ मैं मारा।
1: अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बने कछु पाप न हुई। मोढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिकावन करसी न काना, मम भुजबल आश्रित तेही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी।
0: स्वामी, स्वामी, आपसे मैं चतुराई में नहीं जी सकता। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर भी मैं पापी ही रहा।
1: सुनो बाली, मैं तुम्हारी देह को अचल करता हूं, तुम अपने प्राणों की रक्षा करो।
0: नहीं नहीं कृपाने धार रही, मुनिगण जन्म जन्मांतर यत्न करने पर भी जिस गति को प्राप्त नहीं होते, वो मुझको सहज में ही मिल गई है। चाहने पर भी अंत समय लोग राम नाम नहीं ले पाते, और मेरे सम्मुख तो साकार राम खड़े हैं। ऐसा संयोग क्या फिर आएगा। सो नयन गोचर जासुकुन, नित नेति कहीं श्रुति गावही, जित पवन मन गो निरस करि, मुन ध्यान कबूक पावही। मोहि जानि अति अभिमान बस, प्रभु कहु राखु शरीर ही, अस कबन सट हटि काटी सुरतर बारी करही बबूरही। अब नाथ करि करुणा विलो कहु, देहु जो वर मांगहु, जही जोनी जन्मों कर्म बस, तह राम पद अनुराग हु। प्रभु, देवताओं और मनुष्यों के नाथ, ये मेरा पुत्र अंगद है। बल पराक्रम और विनय में मेरे ही समान है, इसकी बाह पकड़ कर आप इसे अपना दास बनाइए, इसे आश्रय दीजिए।
1: तथास्तु।
2: स्वामी, मैं तो आपको पहले ही समझा रही थी, पर आपने मेरी बात न मानी।
3: पिता, तुम्हारे बिना अब हमारा सहारा कौन बनेगा?
1: देवी तारा, धैर्य से काम लो। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन, इन्हीं पांच तत्वों से ये अधम शरीर रचा गया है। वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, जीव तो नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो?
2: प्रभु, मुझको अपनी परम भक्ति का वरदान दो।
1: निश्चित देवी। सखा सुग्रीव, बाली तुम्हारे अग्रस्त थे, विधिवत इनका दाह संस्कार करो। और लक्ष्मण, तत्पश्चात तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव को राजपद और अंगद को युवराज पद

0: सुशोभित करो।
1: रघुपति की प्रेरणा से सब लोग उन्हें प्रणाम करके विदा हुए, सभी कार्य विधिवत हुए। तब लक्ष्मण जी ने सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुलाकर उनके सम्मुख सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज बनाया। अब ग्रीष्म बीतकर वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। वर्षा काल बिताने के लिए श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके।

0: ताज, आज आपका मन कुछ उद्विग्न लग रहा है।
1: प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और उसके गूढ़ रहस्य में खो गया है मन। इस वर्षा ऋतु को देखकर अनेक विचार मेरे मन में उठ रहे हैं।
0: मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ तात। हमारे वनवास काल में जितनी बार वर्षा ऋतु आई है, जानकी जी साथ रही हैं। इस बार उनकी अनुपस्थिति आपको व्याकुल किए हुए है।
1: तुम ठीक कहते हो तात। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन बोरा। उधर देखो लक्ष्मण, जैसे विद्वान विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार बादल पृथ्वी के पास आकर बरस रहे हैं। पर्वत बूंदों के आघात को इस प्रकार सह रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के वचनों को सहते हैं। छोटी छोटी नदियां किनारे तोड़कर इतराती हुई चल रही हैं जैसे क्षुद्र लोग थोड़ा सा धन पाते ही मर्यादा तोड़कर प्राण लेते हैं।

0: लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुहावनी शरद ऋतु आ गई है, किंतु
1: किंतु क्या तात, आप चुप क्यों हो गए?
0: लक्ष्मण, अभी तक सीता के विषय में कोई समाचार नहीं मिला। एक बार कैसे भी उसका समाचार प्राप्त हो जाए तो राक्षस राज्य क्या काल को भी जीतकर मैं उसे ला सकता हूं। यदि वह कहीं भी जीवित हुई तो मैं इसे यत्न करके अवश्य लाऊंगा।
1: तात,
0: सुग्रीव हूं सुधी मोरी बिसारी, पावा राजकुश पुर नारी, जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतों मूड़ कह काली।
1: बहुत दिनों बाद आज धनुष पर बाण चढ़ाने का अवसर मिला है। मर्यादा पुरुषोत्तम, आप शुभ ना हो, मैं अभी किष्किंधा जाकर सुग्रीव की बुद्धि ठिकाने लगाता हूं।
0: वहां जाकर कोई अनिष्ट न कर देना लक्ष्मण, केवल भय दिखाकर सखा सुग्रीव को यहां ले आओ।
2: जिनकी कृपा से मद और मोह छूटते हैं, ऐसे श्री राम जी को कभी स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है? ये क्रोध तो केवल लीला मात्र है। ज्ञानी ऋषि जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति लगा रखी है, वे ही इस लीला के रहस्य को जानते हैं। इधर किष्कंधा में हनुमान मन ही मन सोचने लगे, श्री राम जी के कार्य को सुग्रीव तो भूल ही गए हैं। उन्होंने जाकर सुग्रीव को स्मरण कराया। सुग्रीव ने कहा, वास्तव में ही हनुमान, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। विषय वासना ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया है। ऐसा करो पवन पुत्र, जहां जहां वानरों के समूह रहते हैं वहां वहां दूतों को शीघ्र भेजो और कहलवा दो कि 15 दिनों में जो नहीं आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तह कपि धाए।
1: कहां है सुग्रीव, उन्हें शीघ्र बुलाओ, नहीं तो मैं पूरे नगर को जलाकर राख कर दूंगा।
3: मैं युवराज अंगद प्रणाम करता हूं देव, हम लोगों को अभिदान दें, हमारे अपराध को क्षमा करें।
1: डरो मत अंगद।
4: हनुमान, हनुमान।
5: आज्ञा महाराज। देवी तारा को साथ ले जाकर लक्ष्मण जी को समझाओ, उनके क्रोध को शांत करो।
6: हम उन्हें अभिभवन में लेकर आते हैं महाराज। मैं प्रणाम करती हूँ भगवान।
5: मेरा भी प्रणाम स्वीकारें देव, हमें आशीष दें।
1: मेरा आशीष सदैव आप लोगों के साथ है।
6: आइए प्रभु, राजभवन को अपने चरणों से पवित्र कीजिए।
5: मुझको अपनी भूल का पश्चाताप है देव।
1: उठो वानरराज, मेरे कंठ से लग जाओ।
5: हे नाथ, विषय के समान कोई मत नहीं है, मैं तो साधारण जीव हूं, जबकि ऋषियों तक के मन में ये मोह उत्पन्न कर देता है।
7: लक्ष्मण जी, हमने सब दिशाओं में बानर यूथ बुलाने के लिए दूत भेजे हैं।
1: ठीक है, आओ अब श्री राम जी के पास चले।
2: हर के चले सुग्रीव, तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। श्री राम सुग्रीव आदि के बीच जानकी जी की खोज के लिए बातें होने लगी। यही विधि होत बत कही, आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिसि देखिए की सुबरूत। तब सुग्रीव की आज्ञा पाकर सब बानर योद्धा जहां तहां खड़े हो गए। सुग्रीव ने उन्हें सारी बातें समझाते हुए कहा,
8: शांत हो जाओ, सब शांत होकर सुनो। वानर वीरो, सीता जी की खोज के लिए आपको यहां बुलाया गया है, यह भगवान राम का कार्य है। मेरा अनुरोध है आप सब लोग सीता जी को जाकर खोजो, इसके लिए 1 मास की अवधि है। जो बिना सुध लिए अवधि समाप्त करके लौटेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा।
9: भगवान राम की जय! भगवान राम की जय! बाना राज सुग्रीव की जय! बाना राज सुग्रीव की जय! बाना राज सुग्रीव की जय!
8: सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मतिधीर सुजाना सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू सीता सुध पूछे सबकाहू मन क्रम वचन सु जतन विचारहू रामचंद्र कर काज सवार।
0: यह मेरी मुद्रिका है हनुमान, यह सीता को देना, उन्हें सब प्रकार से समझाना, मेरे विरह प्रेम शक्ति सबके विषय में उन्हें बताना और शीघ्र लौटना।
2: हनुमत जन्म धन्य करी जाना, चलेऊ हृदय धरि कृपा निधाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। श्री राम जी से आज्ञा लेकर ये वानर योद्धा सीता जी की खोज में आगे बढ़े।

0: सबने उस तपस्विनी को प्रणाम किया, अपना वृत्तांत सुनाया, उससे आज्ञा लेकर जी भर स्नान किया, वाटिका से मधुर फल तोड़ तोड़ कर खाए, थोड़ी देर आराम किया। तब तपस्विनी ने इन्हें अपनी कथा सुनाई और कहा, मैं तो अब वहां जा रही हूं जहां भगवान रामचंद्र हैं, उनसे उनकी अनपायनी भक्ति पाकर बद्रिकाश्रम चली जाऊंगी। तुम लोग इस विवर से निकलकर आंखें मूंदना, आंखें मूंदते ही सिंधु तट पहुंच जाओगे।
1: कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। अवधि समाप्त हो चुकी है और काम कुछ भी नहीं हुआ।
2: दोनों प्रकार से अब तो मृत्यु दिख रही है। इधर सीता जी का पता नहीं लग रहा, कब तक इन पनों में भटकते रहेंगे। किष्किंधा लौटे तो बानर राज हमारा वध कर देंगे। मेरा वध तो वो मेरे पिता की मृत्यु के साथ ही कर देते। भगवान श्री राम ने मेरी रक्षा कर ली। सुग्रीव का मुझ पर कोई एहसान नहीं है। अब मुझको तो अपनी मृत्यु में कोई संदेह नहीं दिख रहा।
1: सुनो युवराज, तुम्हारे कारण सभी अधीर हो रहे हैं, सभी की आंखों में पानी है। ये हम सबका निर्णय है। हम सीता जी की सूचना लिए बिना किष्किंधा नहीं लौटेंगे।
3: आओ लवण सागर के तट की ओर चलते हैं।
1: यहां कुशा बिछाकर थोड़ी देर विश्राम करें।

0: ये गिद्धराज जटायु का बड़ा भाई संपाती तो नहीं?
1: मेरा विचार है वही है।
2: आज सब ही कह बच्चा ने कारा
1: चले आहार बिन मर
2: तब ने मिल भरी उधर आहारा आज दिन बिली एक ही बार।
3: अब तो साकार मृत्यु सामने खड़ी हुई है,
0: इससे निपट लेंगे। सोचने की क्या बात है,
3: वास्तव में किथरा जटायु के समान कोई धन्य नहीं हो सकता। वे परम भाग्यवान है जो भगवान राम की काज अपने प्राण त्याग कर परम धाम।
2: सुनो बंधु, मुझे समुद्र के तट तक ले चलो, मैं जटायु को दिलाने के लिए दूंगा। फिर मैं तुम्हें सीता जी के बारे में बताऊं।

0: सुनो वानर वीरों, मैं और जटायु बचपन से ही महत्वाकांक्षी थे। यौवनावस्था में मैं और वो सूर्य तक पहुंचने की आकांक्षा में उड़े। सूर्य की अपार तेज को सहन न कर सकने के कारण वो तो पथ से ही लौट आया, पर मैं दम भी उड़ता ही चला गया। रवि के निकट पहुंच गया, सूर्य के अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं घोर चीत्कार के साथ धरती पर गिरा।
1: फिर
0: चंद्रमा नामक ऋषि को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मेरा उपचार किया, अपने ज्ञान द्वारा मेरे दंभ को नष्ट किया। उन्होंने ही मुझको बताया था कि त्रेता युग में भगवान मनुष्य का रूप धारण करेंगे। राक्षसपति उनकी पत्नी सीता का हरण करेंगे। सीता की खोज में प्रभु अपने दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे पंख हो गएंगे। तू उन्हें सीता दिखा देना। आज ऋषि की वाणी सत्य हुई है।
1: सीता जी कहाँ है?
0: हाँ, देखो उधर, देखो उधर, त्रिकूट पर्वत पर लंका वसी हुई है। वहां रावण निडर होकर राज्य करता है। उसी की अशोक वाटिका में सीता जी विचार मग्न बैठी है। मैं उनको देख रहा हूँ, मैं देखा हूँ तुम नहीं। गीधे दृष्टि अपार, बूढ़ भयं उन्नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। तुमसे जो भी शतयोजन समुद्र पार कर जाएगा, उसे ही भगवान का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दृढ़ता से काम लो, राम को हृदय में धारण करो। देखो देखो, प्रभु कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है, पंख उगाए हैं। कायरता छोड़, लंका पहुंचने का कोई उपाय करो। अच्छा अच्छा, अब मैं चलूंगा।
2: बूढ़ा हो चुका हूं, अब शरीर में तरुणाई का लेश मात्र भी नहीं रहा। जब भगवान राम ने वामनावतार लिया था, तब मेरे शरीर में अपार शक्ति थी। बलि को बांधते समय प्रभु ने अपनी देह इतनी बढ़ाई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर मैंने दो घड़ी में ही दौड़

0: बैठकर प्रभु के उस शरीर की 7 प्रदीक्षिणाएं कर ली थी।
1: मैं समुद्र पार तो जा सकता हूं, किंतु लौटने के बारे में मेरे मन में कुछ संदेह है।
0: तुम सब कुछ कर सकने में समर्थ हो, किंतु तुम हमारे नायक हो, तुम्हें हम कैसे भेज सकते हैं? हनुमान, हनुमान, महाबली, तुम चुप क्यों बैठे हो? पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हारे लिए कठिन है, जिसे तुम नहीं कर सकते? भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है।
1: हनुमान जी का ये अद्भुत रूप है, लगता है जैसे साक्षात सुमेरु पर्वत हो।
2: मैं इस समुद्र को खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा। मैं सहायकों समेत रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं।
3: जामवंत, मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीन जहू मोई।
0: तुमने हम सबको उबार लिया है तात, बस तुम इतना ही करो, सीता जी को देख और उनके समाचार लेकर लौट आओ। उसके उपरांत कमल जैसे नेत्रों वाले श्री राम राक्षसों का संहार करेंगे। कौतुक के लिए वानर सेना भी साथ होगी।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।